You're listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3 FM.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

जो तुझको देखा आसमां में चांद था नहीं, कहीं पे छुप गया के कहता लगता नहीं। इससे हसीन मैंने देखा कहीं कुछ के लोग यूं ही

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

ये हवाएं मुझे लेके कहां जाएंगी, लेकिन ये हवाएं मुझे लेकर जरूर आ चुकी हैं। वेलकम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो अलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश, और आपकी मॉर्निंग्स को बिंदास बनाने के लिए मैं जो है अपने स्टूडियो पे पहुंच चुकी हूँ। आज की तारीख जो है वो 11 मई है और इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में 6:07 हो रहा है नहीं नहीं जेंजी वाला 6:07 नहीं, 6:07, अब 8 मिनट हो गए। सो 6:08 जो है इस वक्त हो रहा है मेरी स्टूडियो वाली घड़ी में, एंड बहुत सारी अमेजिंग बातें, बहुत सारे गाने और बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी मस्ती जो है वो आज बिंदास मॉर्निंग पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपकी जो है थोड़े से प्यार और थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत है, तो जल्दी से फोन उठाओ मेरी जान और गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस मुझे कर डालो 3311063 पर। बाकी गाने गुनगुनाने के लिए जो है हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बहुत ज़रा अमेजिंग फन होने वाला है। सो यार कहीं मत जाना, यहीं पर रहना ठीक है और अगर ऑफिस के लिए निकल चुके हो, स्कूल के लिए निकल चुके हो, तो आपका जो है दिन बहुत ज़्यादा शुभ जाए। होमवर्क जो है वो टीचर ना पूछे, और बॉस जो है वो आपको जो काम दिया था वो उसका फॉलोअप ना मांगे, और अगर मांगे तो आपके पास सब कुछ हो बस यही आशा कर सकती हूँ, यही होप कर सकती हूँ। और आप जो है दिन का क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है आज आपके साथ, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना और आपके रेडियो सेट्स पर, से इंजॉय कीजिए। और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास। पति पत्नी और वो दो का ये गाना है।

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

सत्य प्रेम की कथा मूवी से। गाने का नाम नसीब से। अब देखिए, नसीब से मिलते हैं आपको जो है मेरे जैसे लोग जो सुबह सुबह उठकर

0: सो रशीन जी ने कहा है गुड मॉर्निंग सुदीप एंड कशिश. सुदीप तो रशीन जी सॉरी आज फिर से उठ नहीं पाए और फिर से नहीं आ पाए हैं. हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू सो मच टू यू टू. जुल्फी जी जो हैं उन्होंने भी हमें मैसेज कर दिया है और जैसा चश्मा मैं पहनती हूँ बिल्कुल वैसा ही चश्मा इस फोटो पे भी दिखाई दे रहा है मुझे और उस पे लिखा है गुड मॉर्निंग. एंड शशिकांत पाटिल जी ने जो है गुड मॉर्निंग लिखा है एंड एक बहुत ही क्वर्की और क्यूट सी गुड मॉर्निंग वाली जो इमेज है वो हमें भेजी है. एंड ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग लोग जो है वो हमें मैसेज जो है कर रहे हैं. सो हैव अ अमेजिंग डे एंड थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस. ये जो है निज़ाम जी ने कहा है एंड बहुत सारे लोग जो है हमें ऐसे ही मैसेज कर रहे हैं. अभी भी किसी का मैसेज आया है जिन्होंने भी हमें गुड मॉर्निंग जी कहा है इनका नाम मुझे नहीं समझ आ रहा है. सो प्लीज़ अपना नाम जो है वो प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं सबको बता सकूं कि आपने मुझे कितने प्यार से गुड मॉर्निंग कहा है. खैर आप सब भी अगर चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर और मॉर्निंग वाला मोटिवेशन जो है वो मुझे आप दे सकते हैं. बाकी अमेजिंग वाले गाने तो मैं आपको जो है सुना ही रही. कूल सॉन्ग ऑफ द आर आएगा आपकी रेडियो सेट्स पर तो इसे इंजॉय कीजिए. और बाकी आने के बाद जो है इस गाने के बाद आने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब देकर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं. हाँ मतलब सुदेव से मैंने कुछ चीज़ें अपनाई हैं और वो है ये डायलॉग्स. तो जल्दी से आइए इस गाने के उस पार
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर क्या पर ये बात है कुसाम.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक। देखिए कहाँ कहाँ से गाने ढूंढ के लाती हूँ ना मैं आपके लिए, एकदम सूदिंग वाले। अब कैसी लग रही है ये प्लेलिस्ट ये भी बता देना, अगर आपके कोई फेवरेट गाने हैं तो वो भी बता देना। कोशिश मैं कर सकती हूँ कि मैं उन गानों को जो है अपनी प्लेलिस्ट में इनकॉर्पोरेट करूँ, वरना कोई बात नहीं यार, कोई और चला देगा। फिलहाल मैं आ गई हूँ आपसे ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाला सवाल पूछने के लिए, यानी ये पता करने के लिए आप चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से कितने ज़्यादा स्मार्ट है। तो जितने भी बच्चा पार्टी इस वक्त स्कूल जा रहे हैं फोन उठा लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग वाला सवाल मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। हाँ जी, देखिए हम जो है कतर में रहते हैं और पूरी दुनिया के बारे में तो कई बार नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं उसी जगह के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। सो एक कतर से जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछने वाली हूँ आपसे। कतर नेशनल म्यूजियम जो है उसका डिज़ाइन, उसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन कौन से फ्लावर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। सो देखिए आपको जो है कुछ नहीं करना है, 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर जो है मैसेज करना है और मुझे बस आंसर दे देना है। 3311063 बताना आपने बस इतना सा है कि जो कतर नेशनल म्यूजियम है उसका जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो कौन से फ्लावर से इंस्पायर्ड है। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है और अगर फिर भी आपको जवाब नहीं पता है तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा जो है आप हेल्प चीटिंग नहीं बोलूँगी मैं, हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी या गूगल से। देखो हमारा अल्टीमेट गोल यही है ना कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, तो बस नॉलेज लीजिए और जल्दी से कॉल कर लीजिए 3311063 पर। फिलहाल मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना मौसम मूवी से,
1: रब मैं तो मर गया वही शदाए मुझे कर गया वही।
0: सो ये गाना एंजॉय करो और मेरी साथ कहते रहो जी।

0: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
1: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

वाह जी वाह, क्या बात है। देखो सुबह सुबह ऐसे गानों से शुरुआत हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब तो दिन बन ही गया है। सॉरी जी, बहुत एक्साइटमेंट में जोर से गाना बजा दिया ना। कोई बात नहीं, आप लोगों के आंसर्स जो है वो सुनकर ऐसे ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट का ज्वाला भड़क गया है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड एक बहुत ही अमेजिंग सवाल मैंने आपसे पूछा था हमारे जो है कतर से रिलेटेड, कि यार सिर्फ इतना बता दीजिए कि कतर नेशनल म्यूजियम जो है उसका डिजाइन जो है ये कौन से फ्लावर से इंस्पायर होकर बनाया गया है बिल्डिंग का। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे बिल्कुल सही सही आंसर दिया है। सबसे पहले देखिए सोना शंकर जी का मैसेज आया है, प्रशांत जी का मैसेज आया है, उसके बाद डॉक्टर सरिता सिंह जी ने मैसेज किया है, उसके बाद इसरा मोहम्मद जी जो हैं उन्होंने भी हमें बिल्कुल सही आंसर दिया है। एंड सरिता जी ने ये भी मुझसे पूछा था कि सुदेव कहाँ हैं। सो सरिता जी, सुदेव कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता, पता नहीं शायद वो सो रहे हैं या कल जो है ऑलिव रिचार्ज में आपसे मुलाकात करने आए थे तो थोड़ा ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके प्यारे सुदेव जो है वो कहाँ पर हैं। एंड सरिता जी ने ये भी कहा है कि ये जो फ्लावर है जिससे हमारा कतर म्यूजियम जो है इंस्पायर्ड है, ये जब बना था कतर म्यूजियम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सब लोग एंड बहुत प्रमोशंस भी हुए थे इसके। सो सही आंसर है डेजर्ट रोज। आप सब ने जिन्होंने ये आंसर दिया है उनके आंसर बिल्कुल सही हैं, तो तालियां बजा देती हूँ आज मैं ही आपके लिए। अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए और बाकी मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

0: Fresh Song of the Hour.
1: Yegana.
2: पति पत्नी और वो दो का ही गाना है, हमने वही लगाया दिल जहाँ लगाना नहीं था। एंजॉय कीजिए गाना, कहते रहिए जुबिंदर।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: कर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

जिसके खातिर आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ सुबह सुबह। वरना मेरी मम्मी 22 साल से कोशिश कर रही थी, कोई नहीं उठा पाता इतनी सुबह सुबह मुझे। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी मॉर्निंग्स को बिंदास मॉर्निंग बनाने के लिए बिंदास मॉर्निंग शो लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए जी, मैं तो उठकर आ गई थी लेकिन सुदेव से उठना नहीं हो पाया। क्या है ना, आलस का कोई इलाज नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, फिलहाल ओजी जी जो है वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कहाँ है सुदेव, सुदेव कहाँ है, कहाँ है सुदेव। देखिए मैं तो नहीं बता सकती, मैं यहाँ पर हूँ, वो शायद सो रहे हैं। एंड बाकी बहुत अमेजिंग अमेजिंग मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कशिश जी आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या, जज़ाकल्लाह। सुदेव की कमी पूरी करते हुए मैं बता दूं कि इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 7:07, यानी थाला फॉर अ रीजन। और देखिए यार, ये वक्त होता है हमारी मौसम पे बात करने का, सो मौसम की बात जो है वो कर लेते हैं हम। और अब देखिए, मैं जो है वो स्टूडियो के अंदर बैठी हूँ तो मुझे तो मौसम का हाल जो है वो सिर्फ गूगल से पता चल सकता है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। बाकी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं सो उस मतलब निकलने से पहले या चलते हुए अगर रुके हुए हैं तो एक अमेजिंग सी फोटो जो है वो मुझे खींच के भेज दीजिए, आसमान की, रोड की और मौसम की, ताकि मुझे थोड़ा सा ऐसा फील ना हो ना कि मैं यहाँ पर एक बंद स्टूडियो में बैठी हूँ। सो आज का टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट रहने वाला है 38 डिग्री सेल्सियस। ये पढ़ के मेरे पसीने निकल आए हैं। उसके बाद लोएस्ट टेम्परेचर आज का 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और इस वक्त करंट टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मैं हवा की रफ्तार की बात करूँ तो ओह माय गॉड, 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है विंड बह रही है। क्या है, क्या मतलब हुआ इसका। सनसेट जो है वो आज 6:09 पर होगा, तो अगर आप सनसेट देखने का प्लान बना रहे हैं अपने किसी लव्ड वन के साथ तो 6 तक फ्री हो जाइएगा, ठीक है। और बाकी क्या कर रहे हैं आज खास ये भी मुझे बताइएगा। बहुत अमेजिंग अमेजिंग पिक्चर्स जो है वो आनी शुरू हो चुकी हैं, ये लेकिन थोड़ी सी देर में बात करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन जो है वो मुझे प्यार करता है और मुझे ये फोटोज भेज रहा है। सो आप भी जो है अपना फ़ोन उठाइए, फोटो खींचिए 3311063, ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है। इस पर जो है फटाक से पहली फुर्सत पे जो है मुझे आप फोटो भेज दीजिए, अमेजिंग वाले वॉलपेपर वर्दी फोटोज भेज दीजिए। और तब तक ही गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। गाने का नाम खासियत है, और देखिए आपकी तो यही खासियत है कि आप फोटो बहुत अच्छी खींचते हैं, तो प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज दीजिए और ये गाना एंजॉय कीजिए मेरे यानी आपकी कशिश के साथ। और कहते रहिए जियो फिर।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, main hu Sohali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी बस ट्रायल एंड एरर पर ये बिलीव करती हूँ कि यार ये नया गाना आया है, जरा सुन के देखते हैं कि कैसा लगता है। और अकेले मैं क्यों सुनूं, आपको भी इसलिए सुना देती हूँ। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, बिंदास मॉर्निंग शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड मैंने आपसे कहा था यार मैं तो स्टूडियो की इस चार दीवारी के अंदर जो है बंद रहती हूँ, सो आप मुझे जरा अपनी आंखों से बताइए कि इस वक्त बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, और एक एस्थेटिक सी वॉलपेपर वर्दी फोटो मुझे भेज दीजिए। एंड रिचुअल के अनुसार सामी जी ने जो है मुझे बोगनवेलिया की प्यारी प्यारी फोटो भेज दी है और अस्सलामुअलैकुम कहा है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुदेव जो है वो आज नहीं है, पूछा नहीं है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, आप लोग मिस कर रहे होगे ना उन्हें। उसके बाद जो है इदरीस जी ने जो है मुझे बहुत ही प्यारी सी फोटो भेज दी है, अमेजिंग वाली वॉलपेपर वर्दी। उसके बाद सिंधु जी ने जो है गुड मॉर्निंग हैव अ ग्रेट डे लिखा है, एंड एक सिग्नल की फोटो जो है रोड की भेजी है एंड लिखा है वेटिंग फॉर ग्रीन। अब देखिए वेटिंग फॉर ग्रीन कहते कहते एक ग्रीनरी भरी हुई फोटो जो है वो भी मेरे पास आ गई है, मोहम्मद इमरान खान जी ने भेजी है। एंड इमरान जी ये कहाँ की फोटो है, इतनी ग्रीनरी कहाँ पे दिख गई आपको, मुझे ये लोकेशन ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जाऊँगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग वाली फ़ोटो थी। उसके बाद रोहित ने भी हमें फ़ोटो भेजी है, दो फोटोज भेजी हैं रैदर, एक में वो गाड़ियों के पीछे खड़े हैं और एक में उनकी गाड़ी चल दी है। उसके बाद मोहम्मद मुशीर जी ने भी हमें एक अमेजिंग वाली फ़ोटो भेजी है। एंड उसके बाद मनोज जी ने एक फ़ोटो भेज के लिखा है वेस्ट बे राइट नाउ, सो वेस्ट बे की फ़ोटो है, बहुत अमेजिंग, बहुत एस्थेटिक फ़ोटोज़, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आ गया बाहर का माहौल देख के, मौसम देख के। आप लोगों के पास भी अगर अभी फ़ोटोज़ हैं, मौका है, तो आप 3311063 पर जो है वो मुझे फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्यारी प्यारी मैसेजेस हैं या कोई फरमाइश है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो वो भी इसी नंबर पर, यानी 3311063 पर वो ज़बरदस्त वाली बात जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल ज़बरदस्त हिट गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर,
1: अब सुनिए ऑलिव का ज़बरदस्त हिट।
0: गाने का नाम है मुझे बरसात बना लो। देखिए मैं तो बना लेती लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि मुझसे कुछ भी नहीं बन पा रहा। पिछले 3 दिन से मटर पुलाव बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे से बन ही नहीं पाता। पता नहीं किस्मत में ही नहीं है मटर पुलाव खाना या फिर आलस। ये गाना एंजॉय कीजिए और

धुरत धुरत नम नम का मतलब तो नहीं पता, लेकिन मम्मम का मतलब जरूर पता है। बचपन की डिक्शनरी डीकोड कर चुकी हूं मैं। मम्मम मतलब पानी, पानी मतलब हेल्दी चीज।

वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड जैसे मैंने वादा किया था कि आपसे हेल्थ वाली बातें जो है वो करने वाले हैं हम, सो बस एक हेल्थ अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। अलग अलग टाइप की डाइट्स आपने ट्राई करी होगी, अलग अलग टाइप से जो है आपने लोगों की सलाह मानी होगी। सो एक बार वाटर फास्टिंग भी ट्राई कर ही लो। ये एक नया टर्म है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है और वाटर फास्टिंग से समझ आ ही रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। सो सिंपल वर्ड्स में वाटर फास्टिंग का मतलब है एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ आप पानी के अलावा कुछ नहीं कंज्यूम करते, ना खाना, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना और कुछ। अब क्या है वाटर फास्टिंग? ये एक मेटाबॉलिक रीसेट है जो यूजुअली 24 से 72 आवर तक चलता है। इसमें आपकी बॉडी को बाहर से एनर्जी यानी फूड नहीं मिलता, तो वो अंदर जितना स्टोर्ड जो फैट है या जो स्टोर्ड हमारी बॉडी में चीज़ें हैं उन्हें यूज़ करती हैं। अब इसके मेजर बेनिफिट्स जो होते हैं कि बॉडी की एक पूरी जो है ना क्लीनलीनेस हो जाती है, बॉडी की सफाई हो जाती है, बॉडी अपने ख़राब और पुराने सेल्स को रिसाइकिल करके नए सेल्स बनाती है और इससे इंटरनल डीप क्लीनिंग जो है वो हो जाती है। वेट लॉस होता है, जब कैलोरीज जीरो होंगी तो बॉडी में स्टोर्ड फैट जो है वो फ्यूल की तरह यूज होगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो ठीक हो जाती है, यानी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं और हेल्प मिलती है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ का रिस्क है तो। ब्रेन पावर जो है वो बढ़ जाती है, इससे आपका फोकस बढ़ता है और ब्रेन फॉग यानी दिमाग में भारीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए ये सब मैंने लिख के रखा था, नोट्स बना के रखे थे, सो जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से पता किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो ये करने से पहले अपने एक बार डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लीजिएगा, अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिएगा। अब कैसे किया जा सकता है? पानी में थोड़ा सा जो है आप नमक मिलाकर जो है उसे पी सकते हैं ताकि बॉडी में सॉल्ट्स की कमी ना हो। स्लो स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं, यानी 3 दिन में जो है एक बार आप ये कर सकते हैं 16 से 18 घंटों के लिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी पूरा दिन ये फास्ट करने के बाद अगर कुछ खा रहे हैं तो एकदम से खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके खाइए तो जो है बेहतर होगा। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, वरना जो है कुछ रिपरकशंस भी हो सकते हैं इसके। पर बाकी एक बार वाटर फास्टिंग जो है ट्राई कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं फास्टिंग ट्राई तो पानी बहुत सारा पीजिए, ये भी बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए एक अमेजिंग वाला गाना जो मेरी प्लेलिस्ट का एक बड़ा हिस्सा है, मतलब आई थिंक 24% टाइम जो है मैं यही गाना सुन रही होती हूँ। सो ये गाना एंजॉय कीजिए मेरे साथ। और कहते रहिए जी बिंदास, मैं हूँ आपकी कशिश।

0: हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

मेनू वेखना है जी। तो जी आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और वहां पर जाकर हमें देख सकते हैं, और क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। और सुबह से बस इसी कोशिश में लगी हूँ कि आपकी बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बना दूँ। अब देखिए यार, मैंने ना आपसे बस ये पूछा था कि यार मुझे ना अच्छी अच्छी फोटोज़ भेज दो, एंड बहुत सारे लोगों ने अच्छी फोटो भेजी भी, लेकिन एक फ़ोटो है जिसे मैंने बाद में के लिए बचा के रखा था कि इस पर तो मैं स्पेशली बात करूँगी। सो एक सर हैं जिन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी है, इनका नाम जो है वो HM करके लिखा हुआ है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे, एंड इनकी जो फ़ोटो है वो ऐसे लग रहा है कि मैंने AI से बनाई है। मतलब AI से भी इससे ज़्यादा रियल फ़ोटो बन जाती है जितनी इन्होंने मुझे भेजी हुई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने कौन से कैमरे से ये फ़ोटो लिया है कि ये फ़ोटो ऐसी दिख रही है। सर प्लीज़ मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या फ़ोटो है। मतलब पूरी ग्रीनरी दिख रही है, परफेक्ट पेड़ दिख रहे हैं, परफेक्ट आसमान दिख रहा है, कलर एकदम बढ़िया है, सच में एकदम वॉलपेपर जैसी फ़ोटो लग रही है। पता नहीं कहाँ से लिए। सो थैंक यू सो मच ये फोटो भेजने के लिए। आप लोग भी ऐसे ही हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल मस्कारा गाना आ रहा है, गाना एंजॉय कीजिए और मेरे साथ

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

0: अंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: अनकाई के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ.
5: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ.
6: ਮਾਲਾਬਾਰ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਬਿੰਦਾਸ ਮਾਰਨਿੰਗ. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल जूलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक.

0: एंड जिस हिसाब से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का मैंने दिन ऑलरेडी अच्छा बना दिया है. अब देखिए यार, जब आपका दिन जो है अच्छा होता है तो आप बाकी सारे लोगों में भी पॉजिटिविटी फैला सकते हो. तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल जो है T20 लीग में मेरी टीम थोड़ी सी जो है आगे बढ़ गई, जीत गई ये. सो अगर आप बिंदास मॉर्निंग के जो है रेगुलर लिसनर हैं और आप हर रोज हमें सुनते हैं तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से मैं और सुदेव जो है ये अपनी अपनी क्रिकेट की टीम्स को लेके कितने पजेसिव हैं एंड हम कितना ज्यादा उनके जीतने की होप करते रहते हैं और एक दूसरे की टीम को हराने की चाह में लगे रहते हैं. यानी जो मैच जो है फील्ड पे चल रहा है वो तो अपना चल रहा है लेकिन हमारा यहाँ पे अलग मैच चल रहा है. तो लेकिन कल हम दोनों की टीम्स के मैच थे एक साथ, नहीं अलग अलग. सो अगर सुदेव की फेवरेट टीम यानी चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई का मैच जो है लखनऊ के साथ था, जहां पर कहा जा रहा था कि यार लखनऊ के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, वहीं पर चेन्नई ने जो है 5 विकेट से ये जो मैच है ये अपने नाम कर लिया. 4 बॉल्स जो है वो बची हुई थी और उसमें ही पूरा जो टारगेट था वो पूरा कर लिया चेन्नई ने. और अगर मैं बात करूं दूसरे मैच की यानी मेरी फेवरेट टीम के मैच की, सो बैंगलोर और मुंबई के बीच में मैच था एंड वहां पर लास्ट मिनट तक आई किड यू नॉट मैं जो है खाना खाते हुए जो है ये मैच देख रही थी एंड लिटरली एक जो है बॉल बची थी, 2 रन बनाने थे एंड मेरी सांस अटक गई थी कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है. लेकिन जो भाग के रन लिया गया है, एक नहीं दो दो, मजा ही आ गया. 2 विकेट से ये मैच जो है बैंगलोर ने अपने नाम कर लिया एंड अब टेबल जो है वो पूरी तरीके से उल्टा पुल्टा हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन थोड़ी सी देर में आप अमेजिंग वाला गाना जो है एंजॉय करके आओ और मेरे साथ कहते रहो जरा जियो बिंदास.
1: Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
3: Cool song.

देखिए डू और डाई वाली सिचुएशन आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन आज जो है काफी सारी टीम्स के साथ ये वाली सिचुएशन है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। देखिए हमने बात करी कि कल के मैच में कौन कौन जीता था, लेकिन आज का मैच जो है वो बहुत हाई स्टेक वाला है, एकदम डू और डाई सिचुएशन है। दिल्ली और पंजाब के बीच में मैच होना है, जिसमें दिल्ली ने अगर आज का मैच नहीं जीता तो ये जो है टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती हैं। और अगर पंजाब की मैं बात करूं सो अपनी वो जो पोजीशन थी उसे मेंटेन रखने के लिए जो है पंजाब का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं सो कल बैंगलोर ने जीतने के बाद जो है फर्स्ट पोजिशन पर अपनी जगह बना ली है। उसके बाद हैदराबाद, फिर गुजरात, फिर पंजाब और फिर चेन्नई। इस टूर्नामेंट में हम कुछ भी नहीं कह सकते, चेन्नई जो है वो किस तरीके से ऊपर आई है ना ये हम सब ने देखा है। अब आज अगर पंजाब जीत जाती है तो ये शायद और ऊपर आ जाए। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है मैच में? 3311063 पर जो है मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर बता दीजिए। और अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, मैं जरा चाय वाय पी के आती हूँ, बहुत सर दुख रहा है मेरा। ठीक है आप इंजॉय करो और मेरे साथ कहते रहो जी बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास मॉर्निंग,
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. Whoa!

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं हो गया, ये तो स्कूल की होमवर्क कॉपी हो गई, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये क्यों किया वो क्यों किया। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ चुकी हूँ मैं। अब देखिए यार, बात हो गई है थोड़े से ऐसे टेक वेक की जो है जानकारी पाने की। ओ माय गॉड, जानकारी बोल दिया मैंने। सो हुआ ये है कि इंस्टाग्राम ने, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि बहुत सारे बॉट अकाउंट्स को जो है बंद कर दिया, यानी ऐसे अकाउंट्स जो यूज़ में नहीं थे या जो सिर्फ स्पैम करने के लिए थे या नकली फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए थे, उन्हें इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया है। और ऐसे ही आपका जो अकाउंट है वो बंद ना हो, उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। आपको जो है एक वेरिफिकेशन सेल्फी जो है वो आप अकाउंट सेंटर में जाके अपलोड कर सकते हैं, जिससे ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि आप जो है असली हैं, मतलब ये जो अकाउंट है ये आप ही का है। और अगर मैं बात करूँ कि अभी नया इंस्टाग्राम ने जो है क्या लाया है, सो इंस्टाग्राम ने जो है ये फैसला लिया है कि शैडो बैन कर देंगे वो कुछ अकाउंट्स को, जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट जो है वो अपने पेज पे सिर्फ एक वाटरमार्क लगा के पोस्ट कर देते हैं, जैसे मीम पेजेस हुए या ब्रांड पेजेस हुए, वो अब नहीं कर पाएंगे, उनका जो अकाउंट है वो शैडो बैन हो जाएगा। शैडो बैन का मतलब होता है कि नए फॉलोअर्स को, नए लोगों को आपका अकाउंट नहीं दिखेगा, जो आपके करंट फॉलोअर्स हैं सिर्फ वही आपको देख पाएंगे, जिससे रीच जो है वो काफ़ी गिर जाएगी। सो आप अपने अकाउंट को जो है ख्याल रखिए, उसका ऑथेंटिकेट कर लीजिए, वेरिफिकेशन सारी कर लीजिए, और बाकी फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: The big, big, big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: तुरंत आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

कैलेंडर बनाने वालों ने भी जो है ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को जो है हम छोड़कर इतने सारे दिन और भी बना लेंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर आ गई। अब देखिए इतने अलग अलग टाइप के दिन जो है हम सेलिब्रेट करने लग गए हैं कि ये जो है फोमो होने लग गया है हमारे बेसिक वीक डेज को। सो आज की अगर मैं स्पेशल दिन की बात करूं तो वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे है आज। वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे यानी जो भी लोग ईगो में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, उनको जो है अवेयर करने का दिन है। यानी आज अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी ईगो की दीवार जो है वो बहुत लंबी है, लंबी है मतलब बहुत बड़ी है, तो उसे जो है ये बात समझाने का दिन है आज। देखो एक टाइप से ना ईगो अच्छा होता है, जब कुछ जगहों पे होता है या एक नॉर्मल मात्रा पे होता है तो ईगो सही भी होता है, लेकिन जब ये ईगो रिश्ते खराब करने लगे, दोस्ती खराब करने लगे, तो यार ईगो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो अपने अंदर के ईगो को जो है आज मारिए और ये अमेजिंग वाले गाने जो है इंजॉय करते जाइए और आपकी कशिश यानी मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मैं हूं अनिल कपूर।

0: कैलेंडर बनाने वालों ने भी जो है ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को जो है हम छोड़कर इतने सारे दिन और भी बना लेंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर आ गई। अब देखिए इतने अलग अलग टाइप के दिन जो है हम सेलिब्रेट करने लग गए हैं कि ये जो है फोमो होने लग गया है हमारे बेसिक वीक डेज को। सो आज की अगर मैं स्पेशल दिन की बात करूँ तो वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे है आज। वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे यानी जो भी लोग ईगो में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, उनको जो है अवेयर करने का दिन है। यानी आज अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी ईगो की दीवार जो है वो बहुत लंबी है, मतलब बहुत बड़ी है, सो उसे जो है ये बात समझाने का दिन है आज। देखो एक टाइप से ना ईगो अच्छा होता है, जब कुछ जगहों पे होता है या एक नॉर्मल मात्रा पे होता है तो ईगो सही भी होता है, लेकिन जब ये ईगो रिश्ते खराब करने लगे, दोस्ती खराब करने लगे, तो यार ईगो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो अपने अंदर के ईगो को जो है आज मारिए और ये अमेजिंग वाले गाने जो है इंजॉय करते जाइए और आपकी कशिश यानी मेरे साथ कहते रहिए जी ओबिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

पहले पता है क्या होता था कि जो ईद होती है उसमें बना हुआ खाना, उसमें बने हुए स्नैक्स जो है वो हमारे ख़त्म नहीं हो पाते थे, और ये जो दूसरी वाली ईद है ये आ जाती थी. लेकिन अब ना ऐसा हो गया है कि मतलब इतना लंबा टाइम लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि एक साल बाद आई है ये वाली ईद. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए जो है बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ. अब देखिए यार, ईद जो है वो आने वाली है, बहुत सारे फेयर जो है, बहुत सारे मार्केट्स जो हैं वो भी कतर में, दोहा में जो है लग रहे हैं. एंड आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं ये भी मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मेरी पहली ईद है यहाँ पर. सो मैं बहुत एक्साइटिंग तरीके से इसे मनाना चाहती हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ. एंड मतलब रमज़ान जो है वो तो मेरे बहुत ही अच्छे गए थे, आप लोगों के सजेशन से मैंने जो है बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की. अब आप मुझे बताइए कि इस बार मैं ईद की शॉपिंग के लिए कहाँ जाऊँ. 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं. एंड बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर, बहुत सारे अमेजिंग इवेंट्स इस ईद पर जो है होने वाले हैं, उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल परसों नरसों तरसों, ताकि हम थोड़ी और डिटेल जो है वो आपके लिए खोज के निकाल दें. तब तक आप अमेजिंग गाने इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेला जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: Rani, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

देखे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। देखिए नाटक अलग कर रही हूँ मैं, ये समझ आ जा रहा है, एक्टिंग की क्लासेस लेनी पड़ेंगी मुझे। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलू पर, मैं हूँ आपकी कशिश और मेरे साथ आप सुबह से एंजॉय कर रहे थे बिंदास मॉर्निंग। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया मैंने आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का। एंड जिस हिसाब से व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इस कोशिश में कामयाब भी हुई हूँ। लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, गाड़ी धीरे धीरे हौली हौली चलाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और बाकी मेरे साथ कहते रहिएगा जियो बिंदास।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस लाइफ मस्त है, जहां हम लाइफ को फिल्टर से नहीं रियलिटी से देखते हैं. नया वीक ऑफिशियली कल ही स्टार्ट हो गया था एंड अब ऑनेस्टली एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आप फ्रेश फील कर रहे हो या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, क्योंकि वीकेंड पर बहुत ज़्यादा आराम किया और कल बहुत ज़्यादा हैवी यू नो टारगेट्स थे. सो अब लोग लाइफ में क्या करते क्या है, बिगेस्ट स्कैम क्या है हमारी लाइफ का, वीकेंड. हम सोचते हैं कि रेस्ट करेंगे, स्लीप कंप्लीट करेंगे, हेल्दी रूटीन स्टार्ट करेंगे और होता क्या है, सैटरडे नाइट तक बस अब कल का स्ट्रेस जो है संडे का स्टार्ट हो जाता है. भाई कल संडे खत्म हो चुका है, नया दिन, नई चीजें, नए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुके हैं. सो इस मंडे का वेलकम करते हैं और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आजकल थकान ना फिजिकल कम होती है, मेंटल ज्यादा होती है. नोटिफिकेशंस, फ्यूचर प्लानिंग, कंपेरिजन और ब्रेन कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है और इसीलिए कभी कभी पूरा दिन कुछ स्पेशल नहीं करने के बाद भी हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं. आज की जनरेशन का बिगेस्ट वर्कआउट क्या है, थिंकिंग. यस, लेकिन गुड थिंग भी है कि हर दिन हम एक रीसेट बटन ऑन करते हैं और आपको परफेक्ट स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, बस ऑनेस्ट स्टार्ट की ज़रूरत है. सो आज इस ऑनेस्ट स्टार्ट के साथ आई विल बी बैक. आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
3: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग campaigns simple effective integrated call 3009-1063 or 3082-1063
1: hello to all the listeners of

दोहा वंस अगेन स्पोर्ट्स का जो कैपिटल है वो मोड में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है. फोर्थ जीसीसी गेम्स दोहा 2026 ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है और ऑनेस्टली स्केल काफी ह्यूज है. 1000+ एथलीट्स, 6 गल्फ कंट्रीज और 17 स्पोर्ट्स. और ओपनिंग सेरेमनी का जो थीम है वो वन गल्फ वन हार्ट. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बल्कि यूनिटी सेलिब्रेशन है. ओपनिंग सेरेमनी जो है वो भी होगी और साथ ही साथ कतर एक चीज जो है वो प्रूव कर रहा है कि होस्टिंग सिर्फ इवेंट मैनेज करना नहीं बल्कि

0: के सारी अपडेट्स देने के लिए मैं हूँ यहाँ पर. आप मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम जो है वो कौन सा लगता है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

यार मैंने कल जैसे ही पढ़ा तो सोचा कि आपके साथ डिस्कस करती हूँ एक ऐसा टेक डिस्कशन जो ऑलमोस्ट हर आईफोन यूजर ने कभी ना कभी फील किया होगा. क्या ओल्ड आईफोन्स जो है वो इंटेंशनली सो किए जाते हैं? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ पस्त है. और रिसेंटली एक ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टेटमेंट आया और ये जो डिस्कशन था फिर से वायरल हो गया. सो क्लेम ये है कि जब न्यू आईफोन लॉन्च होता है तो ओल्ड फोन्स जो हैं वो सडनली बैटरी जो है वो ड्रेन होने लगती है, हीट ज़्यादा होने लगती है और फिर यूजर्स फील करते हैं कि शायद अपग्रेड करना पड़ेगा. अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एप्पल पे पहले भी बैटरी जो है वो कंट्रोवर्सी आ चुकी है. 2017 में एप्पल ने एडमिट किया था कि ओल्डर आईफोन्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंटेंशनली रिड्यूस की गई थी टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड शटडाउन. एप्पल का एक्सप्लेनेशन था कि ओल्ड बैटरीज अनस्टेबल हो जाती हैं, फ़ोन सडनली ऑफ हो सकता है. लेकिन यूजर्स का आर्ग्यूमेंट क्या था, हमें पहले बताया क्यों नहीं आपने? सो कल मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी जिसमें एप्पल की ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पहले एप्पल में काम किया करती थी उन्होंने ये बात बोली कि इंटेंशनली ऐसा किया जाता है. तो भाई अब ट्रस्ट किस पे किया जाए ये तो नहीं समझ आ रहा था. तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि नया एप्पल का फ़ोन आने के बाद आपका जो पुराना एप्पल का फ़ोन है वो ड्रेन फील होता है आपको, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार इसको अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सो आज की बुक ना थोड़ी सी लाउड है लेकिन काफी चेंज कर सकती है. सो आज मैं एक ऐसी किताब की बात करने वाली हूँ जिसके बारे में हमने पहले भी एक बार बात की है पर आज थोड़ा सा यू नो डिटेल में बात करते हैं. बुक का नाम है ट्यूजडे विद मॉरीस.
1: ओके बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: You are listening Radio All of 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. So 1997 की ये बेस्ट सेलिंग बुक और ऑनेस्टली ये बुक पढ़ते वक्त लगता है जैसे कोई आपको स्लोली लाइफ समझा रहा है. स्टोरी बहुत ही सिंपल है, एक स्टूडेंट और ओल्ड प्रोफेसर मॉरी. ठीक है, अब मॉरी एक सीरियस इलनेस फेस कर रहे होते हैं और हर ट्यूजडे दोनों लाइफ लेसन पर बात करते हैं. टॉपिक्स क्या होते हैं? प्यार, वर्क, रिग्रेट, फैमिली, ये सारे टॉपिक्स इसमें होते हैं. अब आप सोचो ट्यूसडे विद मॉरीज में एवरी ट्यूसडे जो मॉरी है वो एक लेसन देते हैं. बट आई वाज थिंकिंग कि हम ये लाइफ में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते. हफ्ते में एक दिन तो हम भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं पर टाइम निकालने के लिए आपको बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा हटना पड़ेगा ना. लेकिन आपका ध्यान तो कहाँ है, बस लोगों को नीचे गिराने में. सो अब आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला इन सब चीज़ों से. आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करनी है. सो लाइफ जो है वो बात करती है स्ट्रेंजली पीसफुल बहुत लगेगी आपको. और एक लाइन जो बहुत फेमस है इस किताब की वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू लर्न हाउ टू गिव आउट लव एंड टू लेट इट कम इन. ठीक है, और ऑनेस्टली आज की फास्ट लाइफ में हम अचीवमेंट चेस करते हैं और रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं. बुक रैपिडली ये रिमाइंड करवाती है कि बिजी होना और मीनिंगफुल होना सेम चीजें नहीं है. सो यू विल लाइक दिस बुक. और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

सो आज शाम की जो मैच है वो है पंजाब वर्सेस दिल्ली. बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है आई एम श्योर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. कल था बैंगलोर वर्सेस मुंबई, जिसके लिए एवरीबडी वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि मुंबई और बैंगलोर दोनों की फैंस बहुत ज्यादा है. सो अगर मैं बात करूं कल के मैच की, तो कल बैंगलोर ने ये पारी जीत ली है 167 रन 8 विकेट के नुकसान पर और पूरे 20 ओवर में. कल स्कोर काफ़ी कम था, बट लेट्स सी कल क्या हुआ. तो मुंबई ने तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार जो है उन्होंने 2 विकेट लिए. पांचवी बॉल पर उन्होंने नकल बॉल पर रोहित शर्मा को विकेट कीपर जितेश शर्मा से जो कैच था वो करवाया, और अगली बॉल पर ही सूर्य कुमार यादव को स्लिप में खड़े विराट कोहली ने लो कैच पकड़कर पवेलियन वापस भेज दिया. एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि कल तो क्या मतलब विकेट पे विकेट लिए. पर सिक्स ओवर में क्या हुआ था, तिलक वर्मा को कैसे जो सेकंड लाइफ जिसे कह सकते हो आप क्रिकेट में वो मिली, बताती हूँ थोड़ी देर में. आप मुझे बताओ कि आज के मैच में जो पंजाब और दिल्ली के बीच में होने वाला है उसमें आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन है आपका फेवरेट प्लेयर. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: Yes, we were talking about yesterday's match जो था बैंगलोर और मुंबई के बीच में, जिसमें सिक्स ओवर में तलक कुमार जो हैं उनको वापस से, मतलब ऐसे कहा गया कि दोबारा एक लाइफ मिल गई है। रसीक सलाम की स्लोअर गेंद पर तिलक का जो टॉप एज मिड विकेट था उसकी तरफ गया, लेकिन सुयश शर्मा ने एक बहुत ही अच्छा और ईजी कैच पकड़ लिया। अब जो बॉल थी उनके दोनों हाथों से निकल गई पकड़ते पकड़ते बिल्कुल नीचे, और तिलक उस समय 11 रन पर खेल रहे थे। बाद में उन्होंने 57 रन की पारी खेली और मुंबई के टॉप स्कोरर भी बन गए। मतलब कल एक्चुअली 57 सबसे ज़्यादा रन थे मुंबई के। सो ये तो था, मतलब जैसे कोइंसिडेंस कह लीजिए कि बॉल पकड़ ली थी पर हाथों से फिसल गई। बिल्कुल हमारे साथ भी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में बिल्कुल जा चुकी होती हैं पर एकदम से वापस आ जाती हैं। लगता है यार नहीं यार ठीक तो है, सब कुछ सही तो चल रहा है। स्पेशली जब आप देखोगे पर्सनल लाइफ में तो भी ऐसा होता है, और प्रोफेशनल लाइफ में जॉब में भी कई बार ऐसा होता है कि यार मतलब सब जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा लग रहा पर एकदम से सब ठीक हो जाता है। सो कभी भी लास्ट मोमेंट तक जो होप है वो नहीं छोड़नी चाहिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311063। व्हाट्सएप करके बताओ कि आप कौन से मैचेस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हो। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।
2: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

आज आपको ना इंटरनेट की कुछ ऐसी चीजें याद दिलाती हूँ जो आप कभी भूलोगे नहीं, पर अगर अब थोड़ा टाइम उसके बारे में बात नहीं की तो भूल भी सकते हो। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो आज के बच्चे ना डायरेक्टली इंस्टाग्राम और टिकटॉक जनरेशन में आए हैं, लेकिन हमने इंटरनेट का स्ट्रगल वर्जन देखा हुआ है, ठीक है। रिमेंबर ऑर्कुट, याहू मैसेंजर, रेडिफ मेल, इंटरनेट कैफेज, ये सब वो चीज़ें थी जो 2000s के टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी, स्पेशली ऑर्कुट और याहू, ठीक है। मतलब हर कोई ऑर्कुट पे बात करने के लिए साइबर कैफे तक जाता था सो दैट उसको आधे घंटे के लिए सिस्टम मिल सके, वो इंटरनेट चला सके, और वो आइकॉनिक डायल अप सेकेंड ट्रिंग ट्रिंग करते थे, और इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद घर वाले बोलते थे कि फ़ोन मत उठाओ। मतलब ऑर्कुट स्क्रैप्स जो थे ऑनेस्टली सोशल मीडिया के OG वर्जन्स थे। पीपल यूज टू राइट हाई फ्रेंडशिप करोगे, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे, और टेस्टिमोनियल्स क्या होते थे, आज मतलब लिंक्डइन रिकमेंडेशंस होते हैं और ऑर्कुट टेस्टिमोनियल्स होते हैं, और याहू मैसेंजर्स पर बस बटन जो था वो स्पैम करना होता था। पीक इंटरनेट टाइम था ये, लेकिन ऑनेस्टली उस टाइम पर इंटरनेट इतना सिंपल था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था, हम ऑनलाइन अटेंशन के लिए नहीं बल्कि जनरली कनेक्ट करने के लिए ऑर्कुट खोला करते थे। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ यार, मतलब उस टाइम की बात कर रही हूँ जब ऑर्कुट और याहू और ये सब चलाना बस सीखा ही था, और हम डिस्कस करते थे कि यार मेरा भी ऑर्कुट पे अकाउंट है, तुम्हारे अकाउंट का क्या नाम है। सो सोचिए कि कितनी पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, और आज देखिए कि हर दूसरी ऐप आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती है, पर हम करते ही नहीं एक दूसरे से कनेक्ट, हम बस शो ऑफ करते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और बताइए मुझे कि वो कौन सी ऐसी एक पुरानी चीज़ है जो आपको याद रहती है, ऑर्कुट, याहू मैसेंजर, या आपने कुछ और ऐसा यूज़ किया है। 3311063 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو أوليف 106.3 Radio Olive. CEO Bindas.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम स्टार अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: So, आज का टॉपिक ना स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो फील करते हैं कि उनकी लाइफ ना लेट चल रही है. रिसर्च जो है वो स्पेशली कहती है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो अराउंड 40 to 42 years के हैं, लाइक 40 to 42 years तक के. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. और रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है. 20s में यूजुअली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं और डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग होते हैं. और ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर अनरियलिस्टिक प्रेशर क्रिएट होता है. अब 25 साल का मिलेनियर देख के आपको लगता है कि मेरी लाइफ का बहुत स्लो चल रही है, लेकिन रियलिटी एकदम डिफरेंट होती है. मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस जो हैं वो ईयर्स के साथ स्टेबल होते हैं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ आइडिया गेम तो है नहीं, उसमें चाहिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी, इमोशनल मैच्योरिटी और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें. सो इंटरेस्टिंगली एज 40 के अराउंड लोग जो हैं वो कामर डिसीजंस लेते हैं, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करते हैं, फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी बढ़ाते हैं और बेटर करते हैं. स्पीड और स्टेबिलिटी सेम चीज़ नहीं होती, दोनों में ना बहुत डिफरेंस है और इसको क्रिएट करने में एक पर्टिकुलर टाइम तो लगता ही है. अगर आपने अपना बिजनेस 30s में स्टार्ट किया है देन आपको कम से कम 8 से 10 साल वेट करना पड़ेगा. पर अगर आपने अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है इन योर 20s और मिड 20s और लेट 20s, तो हो सकता है कि आप अराउंड 38 समवेयर यू नो अच्छा खासा नाम कमा लो. पर हर चीज़ में चाहिए पेशेंस. सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्लो हो लाइफ में, देन एक गहरी सांस लो और अपने आसपास देखो. हर कोई 25 में सक्सेसफुल नहीं है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: Radio

In association with Homestar Us, we complete your home.

0: सो भाई कतर में एक ऐसा शो चल रहा है जो ऑनेस्टली नॉर्मल सर्कस से काफी डिफरेंट है. मिडिल ईस्ट का फर्स्ट ट्रैवलिंग वाटर सर्कस जो है अभी इस टाइम पर हो रहा है, 31 मई तक चलने वाला है. काफी सारे लोगों की स्टोरीज देखी मैंने और मुझे लगा कि यार मैं अभी तक नहीं गई. ये जो नॉर्मल सर्कस होता है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है. दिस इज लाइट्स, वाटर इफेक्ट्स और एरोबेटिक्स और एरियल परफॉर्मेंसेस, ये सब है वहाँ पर फुल सिनेमैटिक और एक्सपीरियंस के साथ. और इंटरेस्टिंगली स्टेज भी वाटर बेस्ड है. कैन यू इमेजिन? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है आपको टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, पर बच्चों के लिए तो थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं ना, उनको तो लेकर जाइए. शो के जो टाइमिंग्स हैं वो भी बड़े फैमिली फ्रेंडली रखे गए हैं. अगर आपका ऑफिस 4 बजे से पहले खत्म हो जाता है तो एक शो होता है 4 से 6 बजे, ठीक है, फिर दूसरा शो स्टार्ट होता है 7 से 9 बजे, विच इज वेरी नाइस और फैमिली टाइम, जिसमें आप आराम से 7 से 9 बजे तक शो इंजॉय कर सकते हैं. फिर 9 बजे के बाद डिनर करके वापस घर आ सकते हैं. मतलब कितना ज्यादा आसान है. और कतर में एंटरटेनमेंट सीन जो है वो ग्रेजुअली काफी क्रिएटिव हो रहा है. पहले मॉल्स और मूवीज जो थे बस वही हुआ करते थे, अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं. लोग जान रहे हैं कि एक्चुअली क्या क्या है जो बाहर चल रहा है. सो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट. अगर अभी तक नहीं गए हैं तो ये होने वाला है 31 मई तक. सो यू कैन चेक आउट एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

Radio Olive, your happiness frequency. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.

टुडे आई टॉक अबाउट स्लीप, क्योंकि भाई स्लीप डिस्कशन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है। हर कोई परेशान है कि उन्हें टाइम पर नींद नहीं आती, या फिर वो रात को सो नहीं पाते, पूरा दिन उनको लेजी फील होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रात को बोलते हैं बस 5 मिनट और फोन चला लेता हूँ। सो डॉक्टर्स ऑफन सजेस्ट करते हैं कि स्लीप से पहले हॉट शावर जो है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो मैंने सोचा भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं आज और थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, और सरप्राइजिंगली साइंस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। यू आर लिस्निंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो बेसिकली हॉट शावर बॉडी टेम्परेचर जो है वो टेम्परेली इंक्रीज करता है, और जब आप शावर के बाद कूल एनवायरनमेंट में आते हो बॉडी नेचुरली रिलैक्सेशन मोड में शिफ्ट हो जाती है। सिंपल सी लैंग्वेज में ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि स्लीप टाइम जो है वो आ चुका है। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग जो गर्म पानी है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और स्लीप को ऑनसेट फास्टर करता है। लेकिन बिगेस्ट स्लीप किलर क्या है? फोन। हम फिजिकली बेड पर आ जाते हैं लेकिन मेंटली रील्स में ही होते हैं। और भाई मैं तो कभी कभी ऐसे कुछ वेब सीरीज स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे लगता है भाई ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, मतलब एक दो एपिसोड और देखते देखते देखते देखते कब आधी रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और कभी कभार अगर कोई दोस्त और जाग रहा हो तो उससे फोन पे बात और शुरू हो जाती है और फिर हो जाता है सारा काम खराब। सो यू हैव टू डू वन थिंग कि अपना फोन तो आपको साइड में रखना पड़ेगा बॉस। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

बातें करते करते कब बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं और टाइम खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और आज के लास्ट थॉट पर हम पहुंच चुके हैं। आज की जनरेशन का बिगेस्ट प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, गिल्ट भी है। सोचिए हमारे टाइम में जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में बस आए ही थे, हमें किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस होता ही नहीं था। अगर स्ट्रेस था तो ये था कि कॉलेज में क्या पहन कर जाना है, यू नो, आज अपना काम कैसे कंप्लीट करना है। गिल्ट तो किसी चीज़ का मुझे तो कभी नहीं हुआ। सो आज के टाइम पर जो नई जनरेशन है उसके पास बहुत स्ट्रेस है, गिल्ट है। रेस्ट करते वक्त उन्हें गिल्ट होता है, स्लो होने पर उन्हें गिल्ट होता है, फोन इग्नोर करने पर उन्हें गिल्ट होता है। लेकिन सच क्या है, रेस्ट लेजीनेस नहीं होता भाई, रिकवरी होती है। और हर मशीन की तरह ह्यूमन ब्रेन को भी पॉज चाहिए होता है। तो अगर आज पॉसिबल है तो थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा ब्रीथ करो, क्योंकि लाइफ सिर्फ अचीव करने के नाम के लिए तो नहीं है भाई, फील करने के लिए भी है। सो अचीव करने में और फील करने में ना बहुत डिफरेंस है। यू शुड हैव योर यू नो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस जो है ना, जिसे कहते हैं, वो होना ही चाहिए। आपने काम कर लिया, अब आप ऑफिस के बाहर हो तो अब आपकी लाइफ आप अपने हिसाब से डील करो। सो दिस इज द थिंग। इसी के साथ मैं अब आपसे बस यही बोलूंगी कि मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास रेडियो।

0: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: हाय रेडियो ओलिव,
3: रेडियो ओलिव
2: 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान.
3: शाहरुख खान,
4: आई एम नंबर 1 रेडियो ओलिव.
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क. ओलिव म्यूजिक मैराथन, 1 घंटा, 1 घंटा non-stop back to back gaane.

0: इकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है। यह है ऑलिव रिचार्ज ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई 2 बजे से 5 बजे तक का अपना 3 घंटे का सफर जो है शुरू होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी जो है बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक चिल्ड आउट शो के लिए, जर्नी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, किस्सों के बारे में बात करेंगे, खबरों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और अपने मैसेजेस का सिलसिला कर दीजिए शुरू। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और ऑलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने सोचा उस आर्टिकल में जो बात की गई है वो आपके साथ भी जरा शेयर किया जाए। तो आर्टिकल था एआई सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए बहुत सारे एआई मॉडल्स जो हम यूज़ करते हैं, जेमिनी यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, क्लॉड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करने में बहुत हेल्प कर रही है। तो मैंने ऐसे देखा कि भाई इनमें से सबसे अच्छा कौन है, तो एक आर्टिकल आया जिसमें क्लॉड, माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट और जेमिनी के बीच में कंपैरिजन आया था। और मोटी मोटी बात ये है कि उन्होंने बोला कि भाई सबसे पैसा वसूल जो है जेमिनी का था। एक तो खास बात यह है कि जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, जो गूगल के एक इंटरफेस में रहते हैं, इकोसिस्टम में रहते हैं, जेमिनी उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, प्रोवाइडेड गूगल के जो डायरेक्टरीज हैं वो सब जेमिनी यूज़ करती है और उसका जो नोटबुक LLM है वो भी काफ़ी बढ़िया है, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजीली समझना चाहते हैं। और क्लॉड के बारे में जब बात की थी तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो डेवलपर्स हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा और डीपर लेवल पे जो है लॉजिक अच्छा देता है क्लॉड। और माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट के बारे में जब बात आई तो उन्होंने यही बोला कि भाई माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट अगर आप देखिए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको PPT बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, ये सब करना है, उस मामले में काफ़ी अच्छा है। इन तीनों में से सबसे पैसा वसूल ऑथर ने ये बताया कि वो है जेमिनी का, और बहुत ही अच्छा लगा उन्हें जो प्राइस दिया है उसके लिए। अगर वो देखे तो काफ़ी अच्छा वैल्यू जो है जेमिनी ऐड कर रहा है। तो देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, नहीं है ये मैं नहीं बोलूँगा, ये उस इंसान का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी AI यूज़ करते हैं, AI चैटबॉट्स यूज़ करते हैं, तो बताइए आप सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा करते हैं। 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए आपके फेवरेट AI चैटबॉट के बारे में। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई एक चीज मैं बताना चाहूंगा, गर्मी का मौसम आ रहा है, गाड़ी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। स्पेशली आप अपने गाड़ी के इंटीरियर को थोड़ा ठंडा रखने के लिए अगर आप गाड़ी बाहर छोड़ के जाते हैं तो उसके लिए जो कुछ एक्सेसरीज हैं वो खरीद के रखना शुरू कीजिए। अपने स्टीयरिंग व्हील में लगाने के लिए कुछ कवरिंग्स होती है वो आप ले सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि जब हम गाड़ी बाहर छोड़ कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए फिर वापस गाड़ी में आते हैं तो गर्म हवा का भपके का जो झोंका लगता है भाई क्या बताऊँ मैं, बहुत गर्म रहता है। तो इसलिए गाड़ी के अंदर के टेम्परेचर को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्सेसरीज आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके साथ साथ

गाड़ी का मेंटेनेंस भी जरा चेक कर लीजिएगा, और अभी के टाइम पे जो है जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपके टायर का जो एक हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मेक श्योर करना है आपको। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें बताते हुए जो है हम भी आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और अब गाना सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और ऑलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लोकल अपडेट जो है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म आने वाला है वॉलंटियर वर्क के लिए। कतर ने नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है वॉलंटियर एक्टिविटीज को एक रेगुलेटेड सिस्टम के अंडर लेके आने के लिए। ये प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली की 2025-2030 स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसका स्लोगन है अ लास्टिंग इम्पैक्ट। पोर्टल जो है वॉलंटियर्स और अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करेगा, जहां रजिस्ट्रेशन, वॉलंटियर आवर्स ट्रैकिंग और सर्टिफिकेट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए फैसिलिटीज भी की जाएगी और प्लेटफॉर्म डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग भी करेगा, जिससे पॉलिसी मेकर्स को सोशल इम्पैक्ट मेशर करने का और फ्यूचर प्लानिंग में और कैसे चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसका एक डायरेक्शन मिलेगा। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये इनिशिएटिव कतर नेशनल विजन 2030 के गोल्स को सपोर्ट करता है और वॉलंटियर सेक्टर को स्कैटर्ड एफर्ट से एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करता है। तो यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 million riyals dream बिगर ये

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई एक लोकल खबर जो है हमारे हाथ में है, एक लोकल अपडेट हमारे हाथ में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने 18th नेशनल साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सिबिशन 2026 को लॉन्च किया है। ये एक्सिबिशन 12 से लेकर 14 मई तक कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रॉमिसिंग रिसर्चर्स फॉर कतर थीम के साथ जो है ऑर्गेनाइज होगा। इवेंट में 249 स्कूल्स से 2900 प्लस स्टूडेंट्स और 650 प्लस टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पे 2000 से ज्यादा रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स शोकेस किए जाएंगे। एक्सिबिशन में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, एकेडमिक फेम लैब कॉम्पिटिशन और अवार्ड सेरेमनी जैसे एक्टिविटीज भी होंगी। इस इनिशिएटिव का मेन एम, जो उद्देश्य जो है, वो है साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, जो कतर नेशनल विजन 2030 के नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी गोल्स को सपोर्ट करता है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अगला गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Welcome back. You are listening to Radio Olive 106.3 FM और Olive Recharge में मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे चलिए मौसम के बारे में बात करते हैं, मौसम का हाल क्या है देखते हैं। अभी जो टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है वो है 39 डिग्री के आसपास, तो थोड़ी गर्मी है और थोड़ा क्लाउडी भी बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको कई बार कि मैं तो स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ, भाई बाहर का हाल कैसा है मैं बस ये नेट के थ्रू ही बता सकता हूँ, मगर अभी आप लोग बाहर हैं, आसमान कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है, एक फोटो खींच के जरा मुझे भेज दीजिए 3311063 पर और जल्दी जल्दी बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है आपको। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं आज की आज का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस का, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट हम पार कर चुके हैं 40 डिग्री सेल्सियस आज का हाईएस्ट टेम्परेचर। और यही बात बताते हुए जो है हम भी आगे बढ़ते हैं, फोटोज का इंतजार है यहाँ पे, तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी फोटोज क्लिक कीजिए, सेंड कीजिए और बताइए हमें बाहर का माहौल कैसा है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात जो है मैं शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही खुशी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जीसीसी गेम्स 2026 जो है आज से शुरू हो चुका है। 11 मई यानी कि आज से लेके 22 मई तक, बीच में जरा जबान फिसल गई थी माफ कीजिएगा, 11 मई से लेके 22 मई तक जो है जीसीसी गेम्स 2026 चलेगा। ये फोर्थ एडिशन है जीसीसी गेम्स का और इस बार बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पे 1000 से ज्यादा मेल एंड फीमेल एथलीट्स जो है 6 जीसीसी कंट्रीज से आएंगे और वो 17 डिफरेंट स्पोर्ट्स में कम्पीट करेंगे। हैंडबॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, पैडल, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टाइक्वांडो, कराटे, स्विमिंग, बिलियर्ड्स, स्नूकर, 3x3 बास्केटबॉल, शूटिंग, आर्चरी, वॉलीबॉल, इक्वेस्ट्रियन एंड बोलिंग। इतने डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में जो है पार्टिसिपेशन होने वाला है और इस बार जो है एक स्ट्रांग वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा 3x3 बास्केटबॉल में, एथलेटिक्स में, पैडल में और टाइक्वांडो, फेंसिंग, शूटिंग और आर्चरी इवेंट्स में। और इसके साथ साथ अगर हम कतर की बात करें तो फोर्थ जीसीसी गेम्स में कतर रिप्रेजेंट किया जाएगा 300 मेल और फीमेल एथलीट्स के एक डेलीगेशन के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में और गेम्स में फीचर करेंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आज से जो है ऑफिशियली जीसीसी गेम्स 2026 शुरू हो चुका है। स्विमिंग के साथ जो है शुरुआत हुई है हमद एक्वेटिक सेंटर में और 3x3 बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन्स होंगे अलघराफा क्लब हॉल में। फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। आप सुन रहे हो ऑलिव रिचार्ज ओनली ऑन रेडियो ऑलिव। और यहां पे भाई एक नया आवर जो है शुरू हो चुका है, 4 बजे से 5 बजे तक का जो हमारा फाइनल आवर है उसमें हम कदम रख चुके हैं। यहाँ पे मैं ना बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था कि यार अगर हमारे घर में किसी एक डिवाइस को इंटेलिजेंस मिल जाए तो कैसा रहेगा। जैसे कि आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले IoT करके एक चीज आया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हम अपने घर के चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि घर का अगर कोई डिवाइस स्मार्ट हो जाए तो कैसा लगेगा, मैं कई बार इसके बारे में सोचता था। और आजकल के ज़माने में से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि लाइट जो है स्मार्ट हो चुका है, AC स्मार्ट हो रहे हैं, रेफ्रिजरेटर स्मार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं, TV स्मार्ट हो रहा है। मगर मैं चाहूँगा सबसे ज़्यादा स्मार्ट अगर कोई हो तो वो हो हमारा वॉशिंग मशीन, खासकर मैं अपने लिए तो यही चाहूँगा। और बहुत स्मार्ट हो जाना चाहिए, स्मार्ट इन द सेंस, देखिए मैं बता दूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। तो घर में जब मैं होता था तो मेरा मेन काम होता था मशीन से कपड़े निकाल के सुखाने के लिए डालना, और मुझे भाई बहुत ही अच्छा नहीं लगता था ये काम, ठीक है। मैं तंग आ चुका था इस काम से। उसके बाद क्या हुआ, मैं 2015 में घर से निकला, साल में एक बार घर जाता था, मगर जब भी मैं घर वापस जाता था यही काम मुझे मिलता था कि मशीन में कपड़े रखें बाहर डाल दें सुखाने के लिए। तो मैं एक्चुअली यही चाहता था कि भाई वॉशिंग मशीन के भी हाथ पाँव आ जाए, उसका भी दिमाग लग जाए कि हाँ कपड़ा हो चुका है, अब मुझे खुद निकाल के बाहर डालना है। बट देखिए ये सारी जो है वाइल्ड इमेजिनेशन हैं हमारे, ठीक है। मगर वाइल्ड इमेजिनेशन की खास बात यह है कि ऐसे ही किसी ना किसी वाइल्ड इमेजिनेशन के थ्रू ही नए इनोवेशंस जो हैं आते हैं, और वर्ल्ड में इमेजिनेशन के बिना इनोवेशन कभी नहीं आ सकता। मैं चाहूंगा कि यार अगर आपके घर में एक डिवाइस या फिर कुछ भी अगर आप चाहो कि वो स्मार्ट हो जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, एक ऐसा डिवाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कौन सा चाहोगे जरा बताइए मुझे। यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। और हाँ, मैसेज भेजना मत भूलना, 3311-1063 यह हमारा नंबर। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी कर दीजिए मैसेज सेंड। यहाँ पे गाने सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स. दिस इज रणवीर सिंह. रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: रेडियो ओलिव नंबर वन.
1: With
5: Homes Are Us, we complete your home.
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है एक छोटा सा सवाल मेरे पास है। जो प्रथा तनिषा ने शुरू की है, मैं उसको आगे ले जाना चाहूंगा। एक प्यारा सा क्यूट सा लिंक सवाल जो है मैं पूछना चाहूंगा। सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा रूम है जिसका ना दरवाजा होता है ना खिड़की होती है। ऐसा कौन सा रूम है जिसमें ना दरवाजा होता है ना खिड़की होती है। सवाल को आपने ध्यान से सुन ही लिया है तो जवाब भी भेज दीजिए 3311063 पर। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप मुझे मैसेज कर दीजिए। देखते हैं कि किन किन के पास इस सवाल का सही जवाब है। वैसे यहाँ पे मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि भारी मात्रा में जो है हर कोई सही जवाब दे रहा है, मगर थोड़ी देर में कंफर्म करते हैं कि सही जवाब आया है नहीं आया है, कितने लोगों ने सही जवाब भेजा है। फिलहाल यहाँ पे गाने सुनते हैं एक साथ बैठकर और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे ऑलिव रिचार्ज चल रहा है। ऑलिव रिचार्ज में मेरे साथ बिंदास मॉर्निंग से जो है कशिश मैडम आ चुकी हैं यहाँ पे। कशिशवा मैडम बताइए क्या हाल है।
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तंबू जो है ऐसे गाड़ के बैठी हुई हूँ यहाँ पर। आपको बहुत मिस किया मैंने भी और लोगों ने।
0: अरे
1: भी
0: अरे अरे।
1: ऐसा कहना मेरा कर्तव्य है। किया नहीं
0: कर्तव्य फर्ज। क्या बात कर दी आपने। भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। क्या हो गया आपको।
1: आपसे सीख रहे हैं।
0: अरे मैं तो भारी हूँ ही, मगर आपका कैसे हो सकता है। ये ताल्लुक कैसे बैठा भारी पन के साथ।
1: की अपनी पर्सनैलिटी में ही वजन।
0: अरे अरे अरे
1: पर्सनालिटी में भी वजन है।
0: अच्छा समझ गया। गॉट इट। मुझे लगा पर्सनालिटी में ही वजन है। मैं तो लाइट वेटेड हूं करके।
1: एक्जेक्टली। पर कल का मैच देखा आपने।
0: कल का मैच नहीं देख पाया।
1: नहीं देखा। क्या जीती है बैंगलोर
0: है ना। मुझे ये जरूर पता चला कि भुवनेश्वर कुमार ने जो जादू दिखाया लास्ट में, दौड़ के जाके लेट गए थे पिच पे। हाँ वो सीन देखा था मैंने। उसके बाद कोहली भागते हुए डग आउट से निकले, गले लगा रहे थे सबको।
1: रियल सिनेमा गाइस। पीक सिनेमा।
0: बट
1: चेन्नई भी जीत गई थी गाइस।
0: चेन्नई जीत गई थी ना। वही मैंने देखा। मैच नहीं देखा, स्कोर देखा। बट कोई बात, देखिए हार जीत तो होती रहती है, बट हम जीत रहे हैं। अगर मैंने आपको याद है कि नहीं पता नहीं, जब लीग स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे जब चेन्नई बहुत पीछे चल रही थी,
1: हमने बात की थी। और आज मैंने ये शो में भी सबसे सबके सामने अग्री किया इस बात पे कि सुदेव ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है इस टूर्नामेंट में, कोई भी टीम ऊपर आ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: सो बस चेन्नई ने बहुत अच्छा खेला है, अब बस यही रहे तो बढ़िया है।
0: नहीं थोड़ा ऊपर जाए,
1: यही जो स्कोर
0: हल्का सा ऊपर, बैंगलोर थोड़ा नीचे, चेन्नई ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है ना दोनों का थोड़ा थोड़ा।
1: चेन्नई फिफ्थ पोजीशन पे है, बैंगलोर फर्स्ट पोजीशन पे।
0: अच्छा अच्छा, हाँ एक ही बात है। ज्यादा फर्क नहीं है, एफबी दोनों में आता है तो ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअली बुलाया था एक सवाल पूछने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने अपने लिसनर से भी एक सवाल पूछा था। सवाल का लेवल सुन के आप चप्पल मत उतारना, ठीक है। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा रूम है जिसमें दरवाजा नहीं होता, ना ही खिड़की होती है।
1: एक्सक्यूज मी, मैं पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं और खुद से बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। इट्स मशरूम।
0: ओ वाओ, बहुत बढ़िया। मैंने एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मेरे बाकी सवालों का जवाब आपने दिया नहीं था।
1: एक्सक्यूज मी,
0: मैं बता रहा हूँ कि देखिए लेवल अलग अलग होता जा रहा है, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट फिलहाल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और जनता ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। मशरूम इज द आंसर। मैं जानता हूँ कि आप बोलोगे कि सुदेव क्या हो गया तुम्हें।
1: यार और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं ना। महरूम।
0: और अब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो गाइस। गाना प्ले करने का वक्त आ चुका है, कशिश का दिमाग चलने लगा है। वो गाना प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़?

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है। थोड़ी ही देर में जो है 5 बज जाएंगे, यानी कि सिमरन आ जाएगी यहाँ पे। तो ढोल नगाड़े के साथ सिमरन का स्वागत तो किया ही जाएगा, ऑब्वियसली किया जाएगा। मगर जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना प्यार सिमरन को देना, उससे ज्यादा प्यार देना। और जाते जाते जाते मैं आपको यही याद दिलाना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। Stay tuned, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास। रेडियो

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

के क्या गा लेते हैं यार, और हमसे हो भी नहीं होती। देखो बात तो सही है, पर दिक्कत क्या है आपकी? मुस्कुराने पे भी दिक्कत होगी है यार, क्या बात है। अभी फिलहाल सारी दिक्कतें साइड में रखते हैं। कैसा रहा आपका आज का दिन मुझे बताइए, आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेज दीजिए 3311063 पर। अब 4 घंटे अपने ही होने वाले हैं, तो सारा ध्यान सारी अटेंशन मेरी तरफ दे दीजिए। 5:26 हो चुके हैं और मैच भी चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर ध्यान देंगे, आपके दिन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, सुनते रहो रेडियो ऑलिव कॉल, कहते रहो जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hello listeners, mera naam hai Rajpal Yadav, Rajpal Yadav. और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम, जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ओलिव नंबर वन।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Supported by Homes Are Us, we complete

बस फिर गिव अप कर दो यार, नहीं समझ लग रहा तो। 5:18:32 स्टूडियो घड़ी पे हो चुके हैं। सिमरन कौर आपके साथ है, कल जब मेरा शो खत्म हुआ ना तो मैं बाहर निकली, ओए होए होए, इतनी ठंडी हवा चल रही थी यार, क्या मतलब। ये जो अभी हम लोगों को ये मई में वेदर मिल रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हाय ठंडी हवा चल रही है, हाय मौसम अच्छा, हाय बाहर बैठ सकते हैं। सो या आज अभी मुझे पता नहीं है कि बाहर का क्या सीन है, लेकिन विंडी बहुत ज्यादा था। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस है, अभी जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस है। लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो आज का होने वाला है 28 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 11% है, विंड जो है अभी भी 16 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है।

0: चाहिए। मेरी बात कर रही हो ना? सुनते रहो रेडियो ऑलिव पर, कहते रहो जियो बिंदास। वापस लौट के मैच के बारे में बात करते हैं यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes R Us. We complete.

बस जज्बात आ जाते हैं। जज्बात तो अभी मेरे भी हैं क्योंकि आज मैच जो है वो पंजाब का है।

0: क्रैकर बेबी फायर क्रैकर बजाने हैं आज, मतलब इंडिया में बजेंगे जब पंजाब जीतेगा। ओके तो मैच में क्या चल रहा है मैं आपको बता देती हूँ। यार जज्बाती हो जाती हूँ पंजाब के नाम से, लेकिन आज तो पंजाब और दिल्ली का मैच चल रहा है। दिल्ली मेरे नानके, पंजाब मेरा घर। ओके चलो, पंजाब अभी खेल रहा है 5.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद पंजाब का स्कोर है 72। अभी तक एक भी विकेट जो है वो नहीं गया है। सो या अभी तक के मैच का ये हाल है। आने वाले गाने मैंने आपको बता दिए हैं। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, 9 बजे तक हूँ आपके साथ, कुछ भी कह सकते हो यार। 3311063 पर सॉन्ग रिक्वेस्ट मत करना, ठीक है? वो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे अपने आप ही बजा दूंगी। जियो विंडास
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global ke side Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

I know, right? देखो यार, फायर अपने अंदर तब नहीं रहती है. ये वो दिन आ गए हैं कि गर्मियों के दिनों में जब आप ऑफिस में होते हो, हम में से सभी लोग ऑलमोस्ट ऑफकोर्स ऑफिस में ही लंच करते हैं, तो ये मौसम ऐसा है कि बाहर गर्मी है और अंदर नींद है हमारे. जैसे ही लंच करते हैं वैसे ही इस वेदर में नैप लेने का मन करता है, सोने का मन करता है. मतलब ऐसा झपकियां जो है वो आती हैं, इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है. 5:50:23 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो मैं वापस लौट के आपको कुछ टिप्स देने वाली हूं कि ऑफिस में आफ्टर लंच ये जो नैप लेने का मन करता है, ये जो नींद आती है, वो कैसे नहीं आए, उसके लिए आप क्या कर सकते.

मन ही नहीं करता, फिर जब ऐसा नैप लेने का मन करता है फिर कोने ढूंढते हो। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम सब के ऑफिस में बहुत ज़्यादा चिल्ड वेदर होता है, और ऐसे टाइम पे भाई साहब कहाँ पे नींद लें और कहाँ पे भी जाएं, वॉशरूम जाएंगे वहाँ पे भी ठंडी है, पेंट्री में बैठेंगे वहाँ पे भी ठंडी है, ऑफिस में बाकी तो जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे तो है ही ठंडी।

0: Wow.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

हाँ जी, अगर आपको भी खाना खाने के बाद उबासी आती है, नॉर्मली दोपहर में गर्मियों में ऐसा होता है कि नींद आती है, लेकिन ऑफिस वो जगह नहीं है जहाँ पे सो लिया जाए। खाना खाने के बाद थोड़ी सा एक वॉक जो है वो आप कर सकते हैं, फ्रेश एयर लेंगे तो उससे आपका माहौल जो है वो चेंज हो जाएगा। हाइड्रेट करना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सके तो मुंह धो लीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे खुद को, या अगर पॉसिबल है पावर नैप लेना। नहीं पॉसिबल है तो मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल हो पाएगा। टेम्परेचर का एडजस्टमेंट जो है वो कहते रखना चाहिए, लेकिन हमारा ऑफिस तो हमेशा ठंडा रहता है। और थोड़ा कॉफ़ी वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं, किसी से बात करिए। अगर आपके ऑफिस में सबको नैप लेने का मन नहीं कर रहा तो आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में इंगेज कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। लेकिन सिर्फ हमारे ही ऑफिस में मुझे लगता है कि हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, तो हम अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं। जब आप खाना खाए ना लंच में, तो उसमें पास्ता, फास्ट फूड, हैवी फैटी शुगरी मील्स जो है नहीं खाना है आपको, कार्ब्स जो है वो आपको अवॉइड करने हैं। लाइट बैलेंस्ड मील अगर आप खाएंगे ना तो उसके लिए, और शुगर इनटेक, भाई शुगर रश हो जाता है फिर उसके बाद निन्नी आती है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी निन्नी जो आपको दोपहर में आती है ना ऑफिस में, वो थोड़ी सी टल जाएगी।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes Are Us. We complete

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: द बिग biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes R Us. We complete.

Johnny Gaddar. सुने की तरह की हलचल सत श्रीकाल सिमरन कौर आपके साथ एक नंबर गाने हैं आपके लिए दीदी सच्ची में मार दी तो भागती भी रहूंगी गाने गा रही हो।

0: छोड़े मस्त मस्त नैना आपने कैसे देख लिए चश्मे के पीछे, हम स्वीट। ओके सो मैच जो है वो कैसा चल रहा है मैं आपको बता देती हूँ। पंजाब और दिल्ली का मैच चल रहा है और पंजाब खेल रही है 14.3 ओवर कंप्लीट होने का स्कोर हो गया है 146, दो विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। सो मैच का हाल जो है वो ये चल रहा है, लेकिन अगर आप अपना दिल का हाल जो है वो बताना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो डेफिनेटली बता सकते हैं 3311063 पर। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बताओ यार।
1: T20 Score Update Presented by
2: Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Vakra VFS Global K site. Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Aha, what a

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ. जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete your home.
8: I'm the number one radio alert.
9: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਆਪਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯਹੀ ਤੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਕੋ ਬੋਲਤੀ ਹੂੰ ਯਾਰ ਵੋ ਕਭੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਭੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਚਲੋ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਆਜ आजकल हम जेंजी डेटिंग टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. एक डेटिंग टर्म होती है जेंजी की बेंचिंग और कुशनिंग. सो बेंचिंग और कुशनिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका पोटेंशियल पार्टनर रहता है ना उसको आप जो है वो बैकअप पे रखते हो और वाइल डेटिंग अदर्स मतलब उसको आप को पता है कि ये बंदा तो है ही साथ में लेकिन आप जो है बाकी लोगों को डेट करते हो. भाई साहब ये किस तरह की रिलेशनशिप चल रही है यार. बढ़िया है कि इस मतलब ऐसी चीजों में कभी फंसना नहीं पड़ रहा है यार. कोई मतलब अगर आपके साथ बेंचिंग और कुशनिंग करे तो फिर उसका तो मतलब ही नहीं है यार. जो आपसे प्यार करे आपसे प्यार करे, बाकियों को क्यों डेट करे यार, ये क्या बात होती है. लेकिन यार ये जेन ज़ी डेटिंग टर्म है. सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास.
1: Song of the Hour.

0: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

सुने होगे दादी की हाल चाल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। यार व्हेन इट कम्स टू हैविंग पास्ता ना, तो मेरे को व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने पिछले कुछ मतलब टाइम से जो है वो यू नो अपनी डाइट में हेल्दी चीजें ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों को लगता है हेल्दी मतलब बोरिंग खाना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया भी था कि प्रॉपर व्हाइट सॉस पास्ता हाई प्रोटीन कैसे बन सकता है, वो भी बताया था मैंने आपको, है ना। बड़े आराम से वो बहुत ईजिली बन जाता है। अगर बाहर अगर बात करें पास्ता खाने की, तो ऑफकोर्स उसमें चीज़ें जो हैं वो अनहेल्दी होती हैं, हाई कैलरीज होती हैं, लो प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये पास्ते की बात अचानक से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल एक वाइट सॉस पास्ता जो है वो वाइट सॉस पास्ता नहीं, एक्चुअली इसको बोलेंगे हम ट्रफल पास्ता ऑन व्हील। अपने कतर की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ। सो मुंबई में सलमान खान की बहन अर्पिता शर्मा ने एक नया उनका लग्जरी रेस्टोरेंट जो है वो ओपन किया है, जिसके प्राइसेस जो है मेन्यू में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक ट्रफल पास्ता ऑन व्हील जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बारे में बता रहे हैं। वो सिर्फ खाने की वजह से नहीं हो रहा, वो उनके रेट की वजह से हो रहा है। और ये पास्ता है 8,500 रुपीस का। सो मैं इसे हिसाब लगा रही थी, मैंने बोला वो कतरी रियाल में कितना बना, 325-330 रियाल का वो पास्ता बना। अपने कतर में भी इतना महंगा पास्ता जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन ये सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान जो है वो इस पास्ते की वजह से उनका जो रेस्टोरेंट है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जादू और बचा हुआ है बेबी, चक्कू आ गया ना।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: हेलो नमस्कार मम्मा मिया मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव पर इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ Zabardast evening. Make your drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: फादर की दुल्हन से आप ये गाना सुन रहे हैं। जी और ब्रदर भी तो कितना सही होता है यार। अली जफर 7:20:20 स्टूडियो की घड़ी बज गए हैं। सिमरन कौर है आपके साथ, मैच के बारे में बात करते हैं। पंजाब और दिल्ली का मैच चल रहा है और पंजाब अपनी पारी खेल चुका है और 211 रन का टारगेट जो है वो दिल्ली के लिए दिया है। दिल्ली को पहला झटका लग चुका है। बाय द वे उनका पहला विकेट जो है वो जा चुका है। 1.5 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 10 और 109 बॉलों पे 201 रन जो है वो बनाने हैं। बेटा पल्ले बल्ले करने का टाइम नहीं है यहाँ पे, इन्होंने रन बनाने हैं। चको जी फिर आंदियां थोड़ी देर
1: T20 स्कोर अपडेट Presented by Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Bakra VFS Global ke site. Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit. Zabardast hit.

0: से अकेले बल्ले बल्ले नहीं होती, इसीलिए बुला रहे हैं। सही बोलो तो अकेले बल्ले बल्ले करने में मजा भी नहीं है। क्योंकि जिंदगी हम सब की अकेले में बल्ले बल्ले करवाई देती है। नहीं जोक पे हंसी आ रही तो दिक्कत गया, क्योंकि मैंने जोक मारा ही नहीं था, काफी डीप था जो आपको नहीं समझ लगेगा।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल क्या बात है आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है।
0: सो व्हाट द वायरल में आप सब हम कतर वाले जो हैं एक न्यूज देख रहे हैं। एक शवरमा शॉप थी अपने कतर में जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और मतलब बंद होने वाली थी, तो कम्युनिटी ने मिलके हेल्प करके उस जगह को जो है वो बंद होने से बचा लिया। अभी उस शॉप पे पहले कोई भी नहीं आता था, शवरमा शॉप पे अभी लोग जो है वहां पे भीड़ लगी हुई है और मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे इतनी ज्यादा बढ़िया लगी ना कि आप किसी के ऐसे टाइम पे अगर काम आते हो तो सच्ची में कह रही हूँ बहुत दुआएं लगती हैं और बड़ा बड़ा एक बड़ा सही मैसेज भी जाता है हम सबको हमारी लाइफ में कि अगर हम किसी एक इंसान का भी अच्छा कर पाए ना, मतलब हम हमेशा ऐसे बात करते रहते हैं ना कि हम कैसे करें अच्छा, हमारा दिल करता है किसी के लिए अच्छा करने का, आप किसी एक इंसान का भी अच्छा कर पाए ना तो हर एक इंसान अगर किसी एक इंसान का अच्छा करने लगे तो लाइफ कितने हद तक जो है वो सही हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। सो हम्बल बनो यार, अच्छा करो लोगों का, आपके साथ भी अच्छा ही होने वाला है यार। वापिस लौट के नेम गेम खेलूंगी प्रेयर के बाद, तो तैयार हो जाइए अपना नाम सुनने के लिए रेडियो पर।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes R Us. We complete your

ਕਿ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਅਬ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, नेम गेम का रूल मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। क्विकली अपना नाम जो है वो लिख के मुझे कहाँ पे भेजना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 3311063। जी हाँ, 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आप मुझे अपना नाम लिख के भेजिए। ना हाय ना हेलो, कुछ और भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका जो नाम है वही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं अपना स्क्रीन की तरफ जो है मुँह घुमा रही हूँ और फिर आप लोगों के नाम लेने वाली हूँ। रिफत हुसैन, जासिम उद्दीन आलम, शाबाज, मोहम्मद यूसुफ, इद्रीस, क्रिस हेंजो, खेमराज, इमाद नासिर, नावेद अंजुम, नावेद अंजुम, मोहम्मद, सूरज, शाबाज गुलजी, रौनित जी। अपना नाम लिखो दोस्त, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम। रोहित जी, आपने मेरा नाम क्यों लिखा है? सिमरन, माय फेवरेट आरजे। थैंक यू सो मच यार, देखो भड़काऊ मत, मैं भड़क जाती हूँ ऐसे। अभी रुक जाओ, पहले अपना नाम लिखो, बाद में तारीफ लिख देना। जैस खान जी, थैंक यू सो मच। राजन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हमिद जी, थैंक यू सो मच। दिल नवाज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311063 पर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए। रिफत हुसैन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। योगी जी, थैंक यू सो मच। सैफ जी, थैंक यू सो मच। सिंधु जी, थैंक यू सो मच। खेमराज ऑलरेडी आपका नाम ले चुकी हूँ। मनोज जी, थैंक यू सो मच। इमरान जी, थैंक यू सो मच। अक्रम जी, थैंक यू सो मच। रावण जी, थैंक यू सो मच। अजीज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। इमाद जी, थैंक यू सो मच। अहमद जी, थैंक यू सो मच। असरार जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और अपना फेवरेट वाला इमोजी जरूर बना के भेज सकते हैं। ब्रांड न्यू गाना मैं वापस आऊंगा जिससे मस्कारा।

हाय हाय व्हाट अ ट्रैक यार बोलना पंजाब ने पहले खेलते हुए 211 रन का टारगेट दिया एंड दिल्ली अभी खेल रही है और 12.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 114, चार विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं, 46 बॉल्स पे 97 रन चाहिए। अगेन कुछ भी हो सकता है, ये मैच है यार। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, पंजाब को कर रहे हो या दिल्ली को कर रहे हो, बताओ मुझे 3311106 पर आने वाले गानों में से।

0: fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alcohol.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई।

0: गाने कभी कभी हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी आपको उनके लिरिक्स समझ लगते हैं तो गाने और भी प्यारे लगते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हाँ जी, सिमरन कौर है आपके साथ। गाने की लिरिक्स जब आपको हिट करने लग जाते हैं ना, तो भाई साहब अलग लेवल का आप मैच्योर अपनी लाइफ में हो जाते हो। मेरे को एक किस्सा जो है वो याद आता है। मैं इंडिया में थी, मैं जॉब कर रही थी कहीं पे, और सडनली मुझे पता लगा मेरी मम्मा बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, एंड मैं बहुत ज्यादा फ्रीक आउट हो गई थी। और मैं रास्ते में थी और ना एक सडनली गाना चल रहा था, ओके, कि जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। माई गॉड, आई

cried. मतलब पहले ये गाना मैंने सुना था, लेकिन वो गाना उस दिन मैंने महसूस किया, क्योंकि पेरेंट्स का दर्द भाई साहब अलग लेवल का दर्द होता है, कि अगर उनको जरा सा भी वो बीमार हो जाए या ऐसा कुछ हो, और मुझे घर पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था, मैं दिल्ली से आ रही थी, एंड ओ माई गॉड, ये गाना मुझे कभी नहीं भूलता. तो जब आपको लिरिक्स हिट करते हैं ना भाई साहब, समझो आप मैच्योर हो गए, आप बड़े हो गए हो यार. सिमरन कौर आपके साथ, चाहिए बिंदास.

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

ਸੰਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सिमरन गौर आपके साथ और सिमरन गौर की अब कल दीवाने का यहाँ से टाइम आ चुका है सो या इतना ही कहूंगी कि कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात टिल देन खाने पीते रहो ऐश करते रहो चेहरे दे वड्डे वाली स्माइल रखो किसी का दिल मत दुखाना बी नाइस टू एवरीवन यार गुड नाइट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

अच्छा, हर रात एक नई कहानी लेकर आती है, कुछ सवाल, कुछ यादें और कुछ खामोशियां साथ लेकर आती है। और इस वक्त जनाब दिल सबसे ज्यादा सच बोलता है, क्योंकि मिडनाइट लाउंज के सफर में आपकी और हमारी मुलाकात हो जाती है। 106.3 रेडियो ऑलिव पर आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश। और जनाब वेलकम है आपका मिडनाइट लाउंज में। कोई स्वागत करता है बड़ी ऐसी प्याली के साथ, हम स्वागत करते हैं अपनी लवली प्लेलिस्ट के साथ, क्योंकि चुन चुन के लाता हूँ जनाब एक एक ट्रैक जो आपको पसंद आए। वैसे पता है रात का ये वक्त भी ना बहुत अलग होता है, दिन भर हम बिजी रहते हैं, रील स्क्रोल करते करते लोगों को डेडिकेट कर देते हैं, पर जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है, जैसे जैसे शाम आती है, सब शांत सा होता चला जाता है, थॉट्स लाउड होने लग जाते हैं। और शायद इसलिए लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस हमेशा थोड़ी रियल होती है, क्योंकि दिल से होती है। तो आज की रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जनाब, जहां बातें होंगी रील्स और रियलिटी की, फिल्मी स्टोरीज की और उन इमोशंस की जो हम अक्सर सबसे छुपा लेते हैं। तो अगर आप भी इस वक्त हेडफोन्स लगा के या खिड़की के बाहर चांद को देखते हुए सुन रहे हो ना, तो ये जनाब आपके लिए प्यारा सा ट्रैक मैं लेकर आया हूँ। तो कहीं जाएगा नहीं, शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल से नगमे की। जियो बिंदास।

0: अच्छा, ये फितरत ना हम इंसानों की होती है, जब कोई चीज नहीं होती उसको पाने के लिए इतनी टेंशन, अब वो चीज जब मिल जाती है तो पुरानी चीज को वापस पाने के लिए रेट्रो मान के वापस से उसको फैशन में लाने की टेंशन। ये इंसान और इंसान के खर्चे कभी नहीं रुक सकते। वैसे वो इंसान मैं भी हूं जना। Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिड नाइट लाउंज के सफर में, और बारी है
1: रील वाली रियल कहानी।
0: बारियां तो जनाब मेरे इन सामानों की खत्म नहीं हो रही, कभी एक सामान, फिर दूसरे सामान की बारी, फिर तीसरे सामान की बारी। कोई चीज नई ट्रेंड में आती है, हम सोचते हैं ले लेते हैं, लेकिन जो जनाब पुरानी चीजों का शौक रखते हैं, सोचिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी जब उन्होंने घर का वो पुराना टेप रिकॉर्डर बेच दिया था जो उनके पुश्तैनी तरीके से संभाल के रखा गया था, और अब वही वापस उन्हें ऑनलाइन किसी वेबसाइट से ऑर्डर करना पड़ रहा है, या फिर किसी स्पेशल शोरूम जाकर उसे वहां पे खरीदना पड़ रहा है ट्रिपल से भी चौगने दाम देने के बाद। तो सोचिए क्या बीतती होगी हम पर। नहीं, मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे आजकल जो रेट्रो चीजों को वापस, चाहे वो कैमरा हो, कैमरा की ब्लरी इमेजेस हो, या फिर वो इफेक्ट्स हो इंस्टाग्राम के, जहां वो पुरानी नॉस्टैल्जिया चीजों को जोड़ा जाता है ना, नॉस्टैल्जिया आपको कनेक्ट करने के लिए उन वापस चीजों को लाया जाता है मार्केट में और आप वापस उन्हें खरीदते हैं, कहीं ना कहीं ये एहसास कराया जाता है कि जिस चीज की वैल्यू आप अभी नहीं समझ रहे ना, बेटा बाद में बेचने के बाद याद आएंगे वो दिन। वैसे भी फैशन गोल है जनाब, सब कुछ वापस आता जा रहा है धीरे धीरे धीरे धीरे, जो आपने कभी शायद अपने चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स के टाइम का वो चीज है। नहीं, वैसे कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से बेस्ट टॉप ऑफ द ट्रेंड है राइट नाउ, लेकिन वो एक टाइम पे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको अंडर एस्टिमेट करा गया था। तो अंडर रेटिंग चीज को आप टॉप रेटिंग देने के लिए आप मुझे बताइए वो कौन सी चीज है जो आज के टाइम पे पहले की बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इंस्टाग्राम पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश या तो वो रील का लिंक भेजिए, अगर आपने उसको ट्रेंड बनाया है तो वो आप मुझे लिंक भेजिए, अदरवाइज वो ट्रेंड के बारे में बताइए। अभी तो फिलहाल ये गाना कैसा लगा ये जरूर बताइए। जियो बिंदास।
2: Mm-hmm.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। ये है मिडनाइट लव।

अच्छा जनाब, लोग बात करते हैं 90s की, 80s की, मैं बात करता हूँ 2000s की। क्या दौर था यार वो भी, नहीं? सीडीज, कैसेट्स और फिल्मों का अलग ही शोर था। कहानियां सिंपल थी पर इमोशंस प्योर थे और सिनेमा का मैजिक दिल के और करीब था।

Flashback. Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में फिल्मी फ्लैशबैक में चल रहे हैं। चलिए आज ले चलते हैं आपको 2000s की बॉलीवुड एरा में। पता है कल होना होगा टाइटल ओरिजिनली कुछ और सोचा गया था। फिल्म के फेमस ट्रेन स्टेशन और न्यूयॉर्क वाला जो सीन है ना, रियल लोकेशन पे शूट हुआ था। एक्चुअली कोई सेटअप नहीं तैयार किया गया था, कोई ग्रीन स्क्रीन का कमाल नहीं था, इसलिए मूवी के जो इमोशंस थे ना और भी नेचुरल हुए। और यही एक्चुअली होता है अक्सर, कई बार डायरेक्टर्स या फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये सजेस्ट करते हैं कि एक्चुअल लोकेशन पे जितना शूट हो सके ताकि वो फील बढ़ सके, एक्टर और एक्ट्रेसेस को वो फील आ सके। वैसे एक और असली इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं कि फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में इतना इमोशनल एनवायरनमेंट हो गया था कि कई क्रू मेंबर्स की आंखों में आंसू आ गए थे। वैसे मुझे क्या लगता है ना कि शाहरुख खान ने अमन का रोल इतना ऑनेस्टली परफॉर्म किया था कि आज भी लोग उस करेक्टर को सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि फील मान लेते हैं। और जब वो उस फील में चले जाते हैं ना, तो बस 2000s की फिल्मों की वो यादें वापस से जिंदा हो जाती हैं। फिलहाल तो वो फिल्मों के दौर अलग ही थे जनाब, जहाँ डायलॉग्स कम और फिल्में ज्यादा होती थी। फिलहाल अभी एक बहुत प्यारा सा ट्रैक चला रहा हूँ जो वापस से उन यादों को जिंदा कर देगी, तो कहीं जाएगा नहीं। संतरे रेडियो ऑल ओवर दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

एक बहुत पहले प्रोग्राम आता था सास बहू और साजिश, इफ यू रिमेम्बर. मुझे नहीं पता वो अभी आता है नहीं आता, बट स्टार न्यूज पे आता था, आई गेस वो एबीपी न्यूज जब बना दिया गया है. तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम स्कूल से आते थे और मेरी सिस्टर्स वो चला लेती थी सास बहू और साजिश. उस समय बड़ा चटपटा लगता था कि क्योंकि सारे जितने भी शोज होते थे उसकी बिहाइंड द सीन्स की जितनी भी स्टोरीज हैं, जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, वो सब कुछ आ जाते थे उस पे. और बॉलीवुड के ना कुछ राज आज भी दिल को एक्साइटेड कर देते हैं, मैंने देखा है. अगर आपको पता चले तो सही.

Flashback. Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज़ 106.3 Radio Olive पर Midnight Lounge के सफर में फिल्मी Flashback में. दोस्तों, आज का ट्रिविया है एक ऐसे एक्टर का जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री तो चॉकलेटी बॉय बनकर की, लेकिन आज एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और हर जनरेशन के किंग बन चुके हैं जनाब. ट्रिविया है शाहरुख खान जी का. इन्होंने अपनी पहली सैलरी सिर्फ 50 रुपए कमाई थी जनाब, और उस पैसे से वो ट्रेन पकड़कर ताजमहल देखने आगरा चले गए थे. सोचो यार, आज दुनिया उन्हें किंग खान के नाम से जानती है, लेकिन एक वक्त था जब वो भी छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया ढूंढ लिया करते थे. इसलिए कहते हैं जनाब कि सपने बड़े रखो, शुरुआत छोटी हो लेकिन बस एंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, सुपरस्टार वाली नहीं. वैसे एंडिंग जनाब हमेशा अच्छी होगी, लेकिन सफर के मजे हमेशा होने चाहिए. कहते हैं ना, मंजिल का तो पता नहीं लेकिन सफर सुंदर होना चाहिए. मंजिल बाखुदा बहुत खूबसूरत होगी. तो चलिए इस सफर को और खूबसूरत बनाते हैं प्यारे से ट्रैक के साथ. कहीं जाएगा नहीं. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास.

0: दोस्तों पहले जब डायरी में लॉक लगाया करते थे याद है, डायरीज आती थी छोटी छोटी, उसमें आप कुछ लिख सकते थे, उसमें लॉक लगाया करते थे। मेरे को लगता है आधे साल मैंने वो डायरी जरूर खरीदी है लेकिन उसमें कभी कुछ डायरी लिखी नहीं है, ऐसी बस अपना नंबर्स लिख लिए या कुछ ड्राइंग बना ली, उसको लॉक लगा दिया। लेकिन एक टाइम था जब उसमें कुछ कुछ लोग, जैसे मैं बहुत लिखा करता था, अब पता नहीं वो कहाँ गई, क्या हुआ उस डायरी को और उसमें क्या लिखा था, शायद अब मैं ही पढ़ के वापस हंस दूंगा। लेकिन आजकल डायरी में पासवर्ड लगाया जाता है। नहीं, हाय दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज़। मिडनाइट लाउंज के सफर में डिजिटल डायरी का पन्ना मैंने पलट दिया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है
1: डिजिटल डायरी।
0: दोस्तों एक जमाना था जब हम सीक्रेट डायरी में लिखा करते थे बहुत सी चीजें। डियर डायरी, आज उसने मुझे देखा, इश। और आज इंस्टाग्राम, क्लोज फ्रेंड्स, व्हाट्सएप स्टेटस और नोट्स ऐप ही हमारी नई डायरी बन चुके हैं। कभी नोटिस किए हैं रात को 2 बजे इंसान या तो इमोशनल होता है या फिर पुराने स्क्रीनशॉट्स देख रहा होता है। और सबसे फनी बात जनाब ये होती है कि हम स्टोरेज फुल होने पर फोटोज डिलीट करते हैं पर यादें वो कभी डिलीट नहीं हो पाती। तो आज का सवाल ये है जनाब, आपकी डिजिटल डायरी में सबसे ज़्यादा क्या भरा हुआ है, फोटोज, स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स या अनफिनिश्ड ड्राफ्ट्स? जल्दी से मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपका मैसेज। फिलहाल तो मैं भरा हुआ हूँ बहुत प्यारे से गाने चलाने के लिए क्योंकि मेरी लाइब्रेरी पूरी की पूरी फुल है जी, लोडेड बिल्कुल, एक से एक बढ़िया गाना सिर्फ और सिर्फ आपकी इवनिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

मिला। देखो हर रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, कुछ रातें यादें लाती हैं तो कुछ कहानियां दे जाती हैं। गुड इवनिंग कतार, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। कहानी है जो कभी मैसेज भेजा ही नहीं गया उस बारे में। एक लड़का हर रात एक लॉन्ग मैसेज टाइप करता था, दिल की बातें, इमोशंस, कंप्लेंट्स, केयर, सब कुछ, लेकिन सेंड बटन वहां आते आते आते आते आते आते वो मैसेज डिलीट हो जाता था। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पर दिल जो होता है ना वो चुप भी नहीं रह पाता। और सच बताऊं जनाब, लाइफ में कुछ अनसेंट मैसेजेस ही सबसे ज्यादा फील होते हैं। मुझे लगता है कि आज आपके दिल में कोई भी बात है, किसी अपने के लिए एक दुआ जरूर भेजना। हो सकता है वर्ड्स ना पहुंच पाए, लेकिन फीलिंग्स जरूर पहुंच जाती हैं। अभी तो फिलहाल मेरी फील है जी आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की, तो चलिए एक प्यारे से गाने के साथ इस फील को और मुस्कुराहट के साथ बढ़ा देते हैं। तो कहीं जाएगा नहीं, संतरे रेडियो वाले और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अच्छा, सोने से पहले फोन को चार्ज करके बिल्कुल सोते हैं ना, ताकि कल सुबह अलार्म बजना ना रह जाए, ताकि सुबह लेट ना हो जाए, ताकि फोन बस कल बिल्कुल भी ऐसा डल सा ना हो कि बैटरी लो उठाते ही दिख जाए हाथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, पर खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले डोज नहीं देंगे, अगले दिन क्या जा रहा है, उठ जाएंगे फिर से वही मायूस सा दिन, फिर से वही मुंह लटका लटका। नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं चलेगा। कोई कहेगा रात को आकाश को सुन के आए, उसके बाद भी ऐसे मुरझाए। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज के सफर में, और चलिए जानते हैं।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
0: दोस्तों, पूरा दिन हमें दुनिया को रिप्लाई देना होता है ना, रिप्लाई देते रहते हैं, बॉस को, फैमिली को, मैसेजेस को, लेकिन क्या कभी खुद को भी रिप्लाई किया है? आज सोने से पहले ना, बस 10 सेकंड्स के लिए खुद से जरूर कहना, जो भी हुआ मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। हर दिन परफेक्ट नहीं होता है जनाब, पर हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है, और ये बात जानते भी आप। और हाँ, जो लोग आपको जेन्युइनली जो याद करते हैं ना, वो गुड नाइट मैसेज से नहीं, आपकी खामोशी से समझ जाते हैं कि आप ठीक नहीं हो। तो आज नेगेटिविटी को स्विच ऑफ करिए, और उम्मीद को एयरप्लेन मोड पर मत डालिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए। मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज के सफर में एक बार और वापस आ रहा हूं, तब तक के लिए सोने की तैयारी कीजिए, और अगर घर जा रहे हैं तो जल्दी से पहुंच जाइए, लेकिन आराम से गाड़ी चलाइएगा, बी सेफ। और बाकी आरओ जी, गानों को एंजॉय कीजिए मेरे साथ, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, और हर दिल की धड़कन के साथ दिल से बोलिए जियो बिंदास।

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

देखो हर शो का एंड होता है पर कुछ आवाज दिल में हमेशा रह जाती है जैसे आपके मैसेजेस की। Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज। Midnight Lounge के सफर में दोस्तों वक्त हो चला है goodbye कहने का, लेकिन जाने से पहले छोटी सी बात। लाइफ में हर दिन देखो परफेक्ट नहीं होता, कभी ट्रैफिक इरिटेट करता है, कभी किसी की याद इमोशनल बना देती है, और कभी एक पुराना गाना अचानक स्माइल दे जाता है। नहीं, इसी का नाम तो जिंदगी है जनाब, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी इमोशनल और थोड़ी सी बिंदास। अगर आज का शो पसंद आया हो, कोई भी गाना दिल को छू गया हो, तो मेरे को जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और अपने दिल का मैसेज। कभी भी अकेला फील नहीं करना है दोस्त, जहां भी हो, दुनिया के जिस भी कोने में हो, बस इंस्टाग्राम खोलना, रेडियो ऑलिव का पेज खोलना, फॉलो करके रिश्तेदारी गहरी करना, इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और दिल में जो भी है जो किसी के साथ शेयर नहीं भी कर सकते, अपने इस दोस्त के साथ, अपने इस दिल की आवाज के साथ दिल से अपनी बातें खोलना, उन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना, है ना, साथ में मिलकर सुलझाएंगे। ज्यादा ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रैक लगा के जा रहा हूं जिनको सुनकर आपकी दिल की धड़कनें भी कहेंगी जियो पिंदास। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जियो पिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: आज बहुत काम
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening
0: to you। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with her।
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: Okay, that's You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
3: Is brought to you by
4: Homes Are Us. We complete your home.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.